0: खाती हला हेतली आनी हम आला थले मेने ई खाती हाले हम आला थले आले खाती आला हे के थिया मेना बाहले हेले वेले लो असुते बड़ा खडरवा लिबा हे मेने ले थे मा खाती लाले थे बेटा सोए नवतल दिन असुते बल येशु स्वांस के नाम में फले आऊ
1: देखे मा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के थिया ले हम आ
1: तेरे बे दे दे रवा तिरा हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेलिया मेले माथिलिया ले ओबन सुदिवेवा स्वामी इन बात ओ बात सी उदाउ करन ने किने केनाट